दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेशी नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अलीशेर शेर अलीफ। इस घंटे की मुख्य खबर है, ایدیبی خلاندار نی اروپا سنگ مدیرش ایوچاج استاری راجنتی گیون سرکش سنواد می باگلیا. اگست می گنات انتریک پرودگیتا توپا پینتالیس وینگ وارشگند که وشواس نی سجیدار ایوجید هوگی. تاجیکستان کنترل شده در سرچاره سانکه ساده سایوک برای

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना है कि आप सुन रहे रेडियो आवाज़ ताजिक और अभी हम आपको संगीतकार बोरबादी मारवाजी की जीवन के बारे में प्रस्ताव करेंगे हमारे साथ रहे। ताजिक संगीत पुराने समय से ही विकसित हो रहा है और इसके संस्थापक पूर्व के संगीतकार बोरबादी मारवाजी या बोरबादी रामेशगार को माना जाता है। 16 दिसंबर 2025 को ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने मजलिस-ए-ओली को दिए अपने भाषण में निर्देश दिया कि दुनिया के संस्कृति के विकास में बोरबादी मारवाजी के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए विदेश और संस्कृति मंत्रालयों को उनका नाम यूनेस्को के बेहतरीन सांस्कृतिक हस्तियों के रजिस्टर में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। बोरबाद इस कला के सबसे मशहूर लोगों में से एक है। वो एक ऐसे म्यूजिशियन है जिसके मिसाल इंसानी इतिहास में बेमिसाल है। उन्होंने पाया, बजाया, म्यूजिक बनाया और सबसे बड़े शाही दावतों में शिरकत की है। उन्हें एक सिंगर, म्यूजिशियन और इसके शानदार म्यूजिकल ग्रुप के स्थापक के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। उन्हें बोरबाद मारवाजी, बोरबाद रामेशगार, पहलापात, फहलवाद और फहलबोज नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि पहलवी भाषा में बोरबाद शब्द का मतलब है किसी बड़े पद या बड़े बोझा तक पहुंचना। जैसे कि देश के राष्ट्रपति ने कहा, बोरबाद जो छठी और सातवीं सदी में सासानी राजा के दौरान रहते थे और उन्हें संगीत बनाया था, उन्हें दुनिया भर के जाने माने दीवानों और एक्सपर्ट्स ने आर्यन इलाके के पहले म्यूजिक जानकारों और एक प्रोफेशनल कमजोर के तौर पर पहचाना है। बोरबादी मारवाजी ने अपने पिता से कविता और संगीत के प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बातें सीखी जो आपने समय के जाने माने म्यूजिकल और सांस्कृतिक हस्ती थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और कला की गतिविधियों ज्यादातर मार्व में होती थी जो सासानी दौर के सबसे बड़े कल्चरल सेंटर में से एक था। अपनी जवानी में उन्होंने कविता और संगीत के एक्सपर्ट्स से गाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और संगीत के थियोरेटिकल बातें सीखें और गोश्त, याश्त और यसनों पर आधारित मौसमी और सेरेमोनियल थीम पर कई गाने बनाए। बोरबाद का म्यूजिकल सीरियल काम खुसरावानी है जिसके साहित्य, इतिहास और म्यूजिकल सोर्स में दोस्तों खुसरावानी, रोही खुसरावानी और अरबी में तरीकत अल मुलूकिया के नाम से जाना जाता है। ये सासानी शाह खुसराव परवीज को समर्पित प्रशंसा का एक महाकाव्य और ऐतिहासिक संग्रह है। उन्हें तीन तान, 365 धुनों और गीतें, 7 खुसरावानी कहानियों के लेखक माना जाता है जो मरवखानी शैली के संस्थापक है, जो लोगों के संगीत सभ्यता में संगीत कैलेंडर के संस्थापक और नियामक है। बोरबाद के बने म्यूजिकल सिस्टम में म्यूजिकल प्रोफेशनलिज्म की नींव समाज के म्यूजिशियन के सोशल पोजिशन और जिम्मेदारी को बनाने में अहम भूमिका निभाई। बोरबाद ने म्यूजिकल और वोकल कामों के परफॉर्मिंग आवाजों के कैटेगरी में भी बनता है, यानी फीमेल और मेल। उदाहरण के लिए उन्होंने फीमेल सिंगर्स के लिए तहनीस नाम के काम बनाए। फिरदौसी, निजामी, अमीर खुसराव और आन्य की कहानियों पर के लोगों के शास्त्रीय संगीत के निर्माण में बोरबाद की संगीत विरासत के व्यक्तित्व और भूमिका की बहुत सराहना करती है। इसके अलावा सोवियत काल और यूरोपीय शोधकर्ताओं के विश्वकोश और सैद्धांतिक अध्ययनों में दिलचस्प परिणाम प्राप्त हुए हैं जो एक सुसंगत संगीत परिसर, विशेष रूप से पूर्व की कला के निर्माण में बोरबाद के योगदान के बारे में है। ये निष्कर्ष सासानियों के समय और उसके बाद के विश्वसनीय लिखित जानकारी पर आधारित है। मास्टर के संगीत कला पर बोरबाद के कार्यों के प्रभाव के साथ बहुत प्राचीन शैलियों में से एक इस मास्टर के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। संगीत का एक प्रदर्शन और रचनात्मक रूप जिसने ताजिक कलात्मक रचनात्मकता की परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे मरवीचा, मरवी खानी के रूप में जाना जाता है। रचनात्मकता और प्रदर्शन की ये शैली आज भी ताजिक की संगीत परंपराओं में बनी हुई है। एक महान कवि के तौर पर बोरबाद की पर्सनैलिटी और काम पूरे इतिहास में स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और राइटर्स के लिए स्टडी और दीक्षा का सब्जेक्ट रहे।
تاجکستان گنراجیا کے سنکرتی منترالائی کے ویگیانیک انوساندھان سانسان اور سوچنا کے ویگیانیکوں نے اولیک کیا کہ اتکریش سنسکرتی انکروں کی یونیسکو سوچی میں بوربات مروزی کا نام شامل کرنا ایک سمائی ودہا قدم ہے چونکہ تاجک لوگ دنیا کے سب سے سنسکرت اور سبیا راشتروں میں سے سانسان کے ویگیانکوں کے انوسار پورف کے سانگیت ادیوگ میں بورباد کا سانسکریتک یوگدان جو چھتھی اور ساتویں شتابدی میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے ساسانیان رجا کے سمائے میں پرسید ویش ویگیانکوں اور وشیشگیوں دوارا سانگیت ویگیان کے پہلے پارکھی اور آریانگ شیچر کے ایک پیشیوار سانگیتکار کے روپ میں مانیتا پرابتے پیارے سنے والو یہ تھے ہمارے تپانی بوربادی مروزی کی جیونی کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں